लगाओ, हर बजाने लगाओ तू फोन। बात तो कहाँ मेरे गाँव आ जा, तू ठीक है, तू कह देना मैं यहाँ मैं यहाँ चार चार।